0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
0: खलील साहब, आज आपको एक नई बात सुनाऊं?
1: जी जरूर बताएं।
0: आपको सुन के हैरत होगी और मुझे भी पहले पहल बहुत हैरत होती थी कि जापान में लोग गर्मियों में झिंगरों की आवाज से लुत्फंदोज होते हैं।
1: कौन सा झिंगर? वही जो हमारे यहाँ रात को घरों के अंदर शोर करता है, किताबों और कपड़ों को चाट जाता है, वही?
0: किताबों का दुश्मन बरे वो भी झिंगर की एक किस्म है, लेकिन आज बुनियादी तौर पर हम जिसका जिक्र करेंगे उसे अंग्रेजी में सिकाडा और जापानी में सेमी कहते हैं। सेमी या जैमी, ये जो दरख्तों पे बैठता है, दरख्तों में घूमता फिरता है, अमूमन सुबह या फिर दोपहर के वक्त शोर मचाता है, चहचहाता है।
1: अच्छा, वो काला और शफाफ परों वाला सिकाडा?
3: जी वही, जापान का झींगर। असल में जापानी लोग मौसमों के एहसास से न सिर्फ लुत्फंदोज होते हैं बल्कि उनकी कदर भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल दुरुस्त कहा खदीजा। और जापानी लोगों का ख्याल है कि झींगर की आवाज सुनने से उन्हें बदलते मौसमों का एहसास होता है।
3: हाँ, गर्मी आने का एहसास, और जब झींगरों की आवाज बहुत ज्यादा आए तो इसका मतलब है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और उमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू हो जाती हैं।

0: अच्छा तो जो झिंगर है वो गर्मी की आमद का नकारा है क्या?
1: जी बिल्कुल, झिंगरों ने नकारा बजा दिया है खलील साहब। और कहा जाता है कि जापान में कमोबेश 32 अकसाम के झिंगर पाए जाते हैं।
0: अच्छा चलें तो आज आप उनका नाम ले लें, इस बहाने आपका इम्तिहान भी हो जाएगा।
1: अरे झिंगर नामा वसीमा ने शुरू किया था भाई, वही सुनाएंगी हमें।
2: हाँ जी हाँ जी, खलील साहब आपने झिंगर की एग्जाम में दिलचस्पी ली, इसका बहुत शुक्रिया। और अभी खदीजा साहबा ने बताया कि जापान में कमोबेश कहा जाता है कि 32 एग्जाम के झिंगर हैं। इन 32 एग्जाम में से मैंने सिर्फ 6 के नाम बताने हैं, सारे नहीं बताने, क्योंकि कुल एग्जाम का 96% हिस्सा उन टॉप 6 एग्जाम पर मुश्तमिल है। और ये अकसाम मकामी जंगलात और मकामी इलाकों में पाए जाने वाले झिंगरों की नुमाइंदा अकसाम समझी जा सकती हैं
0: जापान के अंदर।
2: जापान
1: जी
2: के अंदर।
1: अच्छा इनमें जो है अबरा जेमी झिंगर की तादाद जापान में झिंगरों की कुल आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा है। जेमी झिंगर जापान भर में पाया जाता है और रोजमर्रा जिंदगी में कमोबेश हर एक से इसका वास्ता पड़ता है। तो आइए इसकी आवाज़ सुनते हैं।
2: जी ये था अबरा जैमी। तो बाकी एग्जाम है नीनी जैमी झिंगर, हिगुराशी जैमी झिंगर, सुकुसुकुबोशी जैमी झिंगर। खदीजा सही बोला मैंने?
1: हाँ मेरे ख्याल में।
2: और कुमा जैमी झिंगर और फिर मिनमिन जैमी झिंगर।
0: चले इसी बहाने आपकी याददाश्त का इम्तिहान हो गया।
1: अच्छा वसीमा ये जो अभी आपने मिन मिन जेमी झिंगर कहा, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आने का मतलब होता है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई और उमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू होती हैं। और अब हम मिन मिन जेमी झिंगर की आवाज़ सुनेंगे।
0: हाँ जब तक बारिशों का मौसम था तब इतनी गर्मी नहीं थी, अब जुलाई का तीसरा हफ्ता जब से शुरू हुआ है तो गर्मी उरूज पर है।
1: जी और जो सुकुसुकुबोशी जेमी झिंगर है उसकी आवाज़ का मतलब समझा जाता है कि अब खिजा आने वाली है, यानी मौसम तब्दील होने वाला है।
2: अच्छा सामिन, सुकुसुकुबोशी जेमी झिंगर जो है जापान भर में अमूमन पाया जाता है सिवाय ओकिनावा के। ये शहरी इलाकों से लेकर नशेबी पहाड़ी इलाकों तक में आबाद है और दुनिया भर में अपनी बड़ी पेचीदा सी मौसीकी वाली चहचहाहट के लिए जाना जाता है। और अक्सर दिन के वक्त चहचहाता है, वो नहीं है जो झिंगर रात को तंग करता है किताबें खाता है, वो नहीं है। अच्छा ये कई अकसाम के जंगलात में पाया जा सकता है, बागात में पाया जा सकता है और चेरी और पर्सीमन यानी जापानी फल के दरख्त पे भी ये आ जाता है। तो आइए इसकी भी आवाज़ सुने। अरे प्यारी सुहानी आवाज़ थी। वैसे खदीजा बरेसगीर के झिंगरों की आवाज़ से कितनी मुख्तलिफ आवाज़ है। हमारे यहाँ तो झिंगर ज़्यादातर ये दो किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, और दूसरी है ना।
1: उसी पर लगता है जापानी जेमी झिंगर की आवाज़ का तर्जुमा कर दिया आपने। अच्छा वैसे वसीम आपकी परफॉर्मेंस हमने सुन ली। खली साहब आप भी अब जापान में मुकीम हैं तो हमें अब ये सुनाइए कि यहाँ क्या कुछ देखा और कैसा पाया सब कुछ।
0: मैंने आपकी झिंगर कहानी तो सुन ली, अब जो दास्तान मैं सुना रहा हूँ उसका उन्वान है जापान जो मैंने देखा।
2: अरे वाह, इस सिलसिले में आज हम क्या सुन रहे हैं?
0: ये किस्सा है बिजली और पानी के कनेक्शन का।
1: यानी कि घर लेने वाला आपका मिशन मुकम्मल हो गया और अब बिजली और पानी के कनेक्शन का मिशन दरपेश है आपको।
0: जी बिल्कुल, टोक्यो में आखिरकार किराए का छोटा सा मकान ही मिल ही गया है। दिल ने सुख का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे प्रॉपर्टी एजेंट ने एक ऐसा जुमला कहा कि सांस वहीं अटक गई।
2: वो सुख वाली
0: बिजली और पानी के कनेक्शन उसने कहा कि आपने खुद लगवाने हैं। अब सच पूछे तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। वजह यह नहीं थी कि कनेक्शन लगवाने थे, वजह यह थी कि चंद महीने पहले पाकिस्तान में बिजली का कनेक्शन लेने का तजुर्बा अभी तक हाफजे पर ऐसे सब था जैसे किसी सरकारी दफ्तर के रजिस्टर पर लगी मोहर।
2: अब एक और मोहर दरपेश आ गया।
0: बंदा एक खिड़की से दूसरी खिड़की, फिर तीसरे कमरे, और फिर जवाब मिलता साहब अभी मीटिंग में हैं, और आखिर में किसी न किसी फाइल को पहिए लगाने की गैर ऐलानिया मगर मारूफ रिवायत।

0: हमेशा तुमसे मोहब्बत की और यासाशी को नारिताई मैं मेहरबान बनना चाहता हूँ, ये सब मदाहों और फनकारों दोनों में मकबूल क्लासिक बन चुके हैं।
1: एक गैर मामूली लाइव परफॉर्मर के तौर पर बड़े पैमाने पर तस्लीम शुदा साइतो ने सोलो परफॉर्मेंस से लेकर फुल बैंड कंसर्ट के साथ भी अपने फ़न का जादू जगाया। अपने रिकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस कैरियर के अलावा वो मुख्तलिफ फनकारों और मौसीकारों के साथ गाने लिखने, प्रोड्यूस करने और तावुन में भी सरगर्म हैं।
2: अच्छा, अपने डेब्यू की 30वीं सालगिरह मनाने के बाद काज़ुयोशी साइतो एक फाल और मुतनव्वो कैरियर जारी रखे हुए हैं। वो मुसलसल मौसीकी के नए अंदाज और तख्लीकी तावुन को दरियाफ्त कर रहे हैं।
1: उरता साहिबा के मुताबिक आज सुनवाया जाने वाला गीत सेमी यानी झींगर उदास गर्मियों का गाना है, जिसमें एक आदमी गर्म मरतूब दिन घूमता है और इसके साथ तन्हाई और कुछ खोने का बढ़ता हुआ एहसास उसे होता है। झींगर शदीद धूप और गायब होते हुए साए जिंदगी की नापायदारी और इस एहसास की अलामत है कि कोई अहम शख्स चला गया है।
0: इस गीत के बोलों में मरतूब मौसम और खिड़की से चिपके एक झींगर का जिक्र है जो चहचहा रहा है, तो आइए सुनते हैं।

0: जी सामिन, काजुयोशी साइतो का गीत सेमी यानी झिंगर हमने सुना, आप सबको कैसा लगा? अब फिर झिंगर की कुछ बातें करेंगे।
1: हमारे अमले के जापानी रुकन युकी यासुमोतो बता रहे थे कि मगरबी जापान के झिंगर की आवाज़ जापान के मशरकी हिस्से के झिंगरों से कुछ मुख्तलिफ होती है।
0: असल में जो अपने हमारे यासुमोतो साहब हैं, उनका आबाई जो मकाम है, आबाई शहर समझ लें, वो मगरबी जापान का हिरोशिमा है ना, तो वहीं की बातें बताएंगे ना। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने सिर्फ कुमा जैमी झिंगर और अबरा जैमी झिंगर और नीनी जैमी झिंगर की आवाज़ें सुनी थी।
2: क्योंकि यासुमोतो तो कहते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा में मिन मिन जैमी झिंगरों की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन वसीमा मैंने तो टोक्यो में काफ़ी सुनी है।
0: है ना, मेरी तो ख्वाहिश है, तमन्ना है और दुआ है कि खिजा की नवीद सुनाने वाले सुकुसुकुबोशी झिंगर भाई का मौसम जल्दी जल्दी आ जाए।
1: हाँ, मैंने सुना है कि टोक्यो में जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अभी जरा सांस लीजिए, कुछ बर्दाश्त कीजिए।
0: वाह, आप भी शायर हो गए। अच्छा, इस शेर से मुझे जापान की शायरी की सिंफ हाइकू याद आ गई।
2: जी बिल्कुल, हाइकू दरअसल फितरत की शायरी है, जो फितरत में मौजूद छोटी छोटी हयातियात यानी मसलन फूल, परिंदे या हशरातुल अर्ज वगैरह पर रोशनी डालती हैं। बुनियादी कवायद के मुताबिक 5-7-5 की तरतीब में 17 हरूफ में लिखी जाने वाली हाइकू में मौसम का एक इस्तियारा या लफ्ज़ भी शामिल होता है जो साल के वक्त मौसम की निशानदेही करता है।
1: तो मौसम और झिंगर का तो मेरे ख्याल में चोली दामन का साथ है, तो क्या झिंगर के मौसम पर भी हाइकूस लिखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त समझे, जवाब दुरुस्त है। मौसम गर्मा या खिजा की तर्जुमानी के लिए झिंगर पर भी हाइकू मौजूद हैं और जापान में हाइकू